Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: तू लव करती है ना मेरे से, बस लव है तो सब है।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ और प्यार की ताकत ही कुछ और होती। और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
3: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae
4: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। Visit Al Ras, Middle East ka number one auto AC spare parts dealer.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
8: There's an excitement in the air. The whole city's waiting for the big match to start. And that's when Papa John's Pizza Tower makes the night complete. Three pizzas and sides, all in one towering box, in three sizes. Plus ice cold Coke, enough for everyone. Order now on the Papa John's app. Papa John's, better ingredients, better pizza.
9: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 10 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: गुड मॉर्निंग, 34 डिग्रीज सेल्सियस ओवरनाइट, काफी ह्यूमिडिटी थी। अभी फिलहाल इट इज डाउन टू 68%, विंड्स ब्लोइंग एट जस्ट 6 किलोमीटर पर आवर। नाइस एंड सनी स्टार्ट टू दिस ट्यूसडे मॉर्निंग, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस।
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एंड कमाल की बात है कि रोज हमें कुछ नया मिल जाता है कहने का, यही कि तू कमाल है टू दिस वंडरफुल कंट्री दैट वी आर लकी एनफ टू कॉल होम.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आज सुबह तारीफ का लेटेस्ट टॉपिक क्या है, व्हाट्स ऑन द मेनू का. ट्यूसडे सुबह 14th ऑफ जुलाई, दुबई हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द 2026 रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज आफ्टर डार्क, यानी कि रात को नाइट स्काईलाइन के मामले में दुबई का कोई मुकाबला ही नहीं. एमिरेट्स आउट परफॉर्म वो टोक्यो एंड रोम. आई मीन टोक्यो एंड रोम जैसी बड़ी बड़ी यू नो सिटीज वेयर यू फाइंड द मोस्ट अमेजिंग फोटोग्राफी, नाइट टाइम फोटोग्राफी, इन शहरों को डिफीट कर दिया दुबई ने. इट इज़ नंबर वन थैंक्स टू इट्स स्ट्राइकिंग नाइट टाइम सीनरी एंड इट हैज़ प्रेज दुबईज दिस रेटिंग हैज़ प्रेज दुबईज इल्यूमिनेटेड स्काईलाइन, लैंडमार्क अट्रैक्शंस एंड अर्बन डिजाइन. द सिटी कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इट्स रेपुटेशन एज अ लीडिंग ग्लोबल टूरिस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन. दैट्स वॉट दिस रेटिंग हैज़ सेड. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस.
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
0: And the tarif doesn't end here. Ek aur reason hai which kind of underlines the efficiency, the attention to detail and the insistence ki har koi yahan pe jo rehta hai, they are all comfortable. So that's coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: listening to The Beat of Bollywood.
1: InsurersMarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from InsuranceMarket.ae.
2: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
3: This summer, there are surprises all across Dubai waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
0: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: मैं भूल जाता हूँ कि इट्स पास्ट 7 AM बिकॉज़ आई एम सो यूज्ड टू स्टार्टिंग द शो एट 6 एंड दैट्स व्हाई आई अज्यूम कि ट्रैफिक नहीं होगा लेकिन नहीं देयर इज क्वाइट लॉट ऑफ कंजेशन 311 E11 पर हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा ऑलरेडी 6 मिनट्स का डिले इन बोथ दीज आर्टरीज एंड देयर इज बेरूत स्ट्रीट D62 हेडिंग साउथ राइट आफ्टर मदीना मॉल यू विल फाइंड 4-5 मिनट की देर Also heading towards E88, E11 पर जैसे आप अजमान इंडस्ट्रियल सेकंड क्रॉस करेंगे एट द जंक्शन ऑफ E88 यू विल फाइंड 4-5 मिनट की देर बुशकारा इन शारजा इज ऑल्सो गेटिंग अ बिट कंजेस्टेड सेफ जोन से शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन E88 ऑल्सो यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन एंड 611 पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है 3-4 मिनट की देर ऑलरेडी हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे।

0: से। बादशाह आज तक गिल विद पानी पानी राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: 8:749 ऑन द क्लॉक ऑन दिस 14th ऑफ जुलाई। व्हाट हैव वी गॉट टू लुक फॉरवर्ड टू ऑन दिस ट्यूसडे। 2 बजे आज 2 PM इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ODI सीरीज शुरू होने वाला है। शुभमन गिल गेव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड विच ही वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स ऑफ कोर्स विद व्हाट हैपेंड इन T20 सीरीज। भाई करना ही पड़ेगा ना। रोको इज बैक इन द स्क्वाड, यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आर बैक एंड देन जसप्रीत बुमराह इज ऑल्सो गोना बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। दैट्स व्हाट शुभमन गिल सेड इफ एवरीथिंग गोज वेल। आज 2 बजे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड। आर यू स्टिल एक्साइटेड अबाउट 50 ओवर्स क्रिकेट? बहुत सारा डिबेट इसको लेकर हो गया है कि इसको 50 ओवर रखें या 40 ओवर। What did the captain of the Indian team Shubman Gill say about this coming up in just a while? Also, the exchange rates and the gold rates are on every family WhatsApp group. So that's coming up in just a while. Keep it locked to the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: यू नो द नेक्स्ट टाइम आई इंटरव्यू हनी सिंह तो उनसे डेफिनेटली पूछूंगा व्हाई डिड यू चूज रोटी दे भिंडी. आई मीन थोड़ी किसी को भगा रहे हो फिर घर से भाग रहे हो तो भिंडी इज सच अ टाइम कंज्यूमिंग काइंड ऑफ अ सब्जी राइट. यू कैन चूज इजियर ऑप्शंस उबले हुए आलू फॉर एग्जांपल.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: ये लड़कियों घर से भगा रहे हो और फिर डिमांड भी कर रहे हो कि रोटी दे भिंडी. ओए होए क्या बात है यार. यू कुड हैव सेड समथिंग सिंपलर यार. दिस इज नॉट डन हनी सिंह. नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली वुड आस्क हिम दिस क्वेश्चन. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड. इफ यू थिंक दैट कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव देन दिस इज डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. selfdrive.ae हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल्स इन द यूएई राइट नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिल्कुल सही सुना आपने. 899 dirhams a month at this price. Paying more just does not make sense, right? No ownership, no long-term commitment, no stress. Just pick your car and drive. Search selfdrive.ae or download the app now. Self Drive, your car, your price, your way.
2: Wo aa gaya, dekho dekho wo aa gaya.
1: Naam hai Sid on the Big Breakfast only on Big 106.2 the beat of Bollywood.
3: Insurance market. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800-ALFRED 24/7. InsuranceMarket.ae.
1: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
7: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E.N.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:06।
1: Bollywood.

0: ठीक 8:10 on this Tuesday की सुबह 14th of July. आप जानते हैं we are big Bollywood fans. That's why we are the beat of Bollywood.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: मतलब ये बात तय नहीं हुई है कि OTT पे जो shows आते हैं उनको हम Bollywood qualify कर सकते हैं कि नहीं. हिंदी film industry में OTT. Anyways, that's a debate for another day. But you know, whenever TVF comes up with a show, वो एक baseline अच्छा तो होता ही है, एक certain level तो उसका होता ही है. And I always look forward to, of course, shows that TVF creates. एक ट्रेलर बाहर आया, the official trailer of Adarsh Bal Vidyalay. That's going to be out on Prime Video on the 24th, यानी कि ठीक 10 दिन के बाद. चलो साथ मिलकर सुनते हैं कि how this trailer sounds.
2: Action. कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, और आज हम खड़े हैं एक ऐसे ही बदबूदार कीचड़ में. ये है आदर्श बाल विद्यालय.
3: ए चुप, अपने हेडमास्टर को बुलाओ.
4: सर, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी. 49 नॉट आउट सर.
5: इस साल 10th बोर्ड्स में दिल्ली के जिन 10 सरकारी स्कूलों का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, उन स्कूल्स के हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाए.
4: इंग्लैंड वाला कैम्ब्रिज?
6: मुझे बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, और हम लोग कैम्ब्रिज नहीं जा पाएंगे.
7: हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स?
8: मैम, ये तो जेनेटिक्स की माँ ही बता सकती है ना.
9: भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ.
10: चिकन 65.
11: नीम का पत्ता कड़वा है.
0: For once, I thought that the jokes are falling a bit flat. But ये जो ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, क्या नाम था हेडमास्टर इनका जो, yeah, that is played by KK Menon. And अर्चना पूरन सिंह is in this one as well. I think she is one powerhouse of talent जिनको अपना ड्यू नहीं मिलता है. But off late, she's been doing some very interesting roles. So, and like I said, TVF का शो है, तो एक certain level तो होगा ही. कैसे पहुंचते हैं क्रेम्ब्रिज ये टीम ऑफ यू नो KK Menon एंड हिज स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट द शो इज गोना बी ऑल अबाउट. सो दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 24th of July को. Coming up on Amazon Prime. Husan tera toba toba toba. Karan Aujla with Toba Toba Bad News. Nahin, it's all about good news right here on The Big Breakfast with me, Sid. Kuch der mein coming up, we are going to be playing the summer song contest. So if you're not WhatsApped, keep WhatsApping BSS space your name to 0543091062.

0: Hollywood. Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर.
2: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: The big mix. Miss kiya gaya?
3: Kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
4: So the letter I'm giving you right now, the letter is the letter D. D for dhol, hai na? To aapko mujhe batana hai D se Bollywood celebrity name.
5: Okay, Deepika Padukone.
4: Very good. D se Bollywood movie.
5: Dangal.
4: Very good. D se place.
5: Delhi.
4: Ab D se batao thing.
5: Dora.
4: यार, अरे यार, ये क्या हो रहा है? चलो राउंड टू. ये तो बहुत इजी राउंड दिया था मैंने. राउंड टू. ओके, जेड. जेड फॉर ज़ोहरा. आप बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम.
5: रीना तमन.
4: वेरी गुड. अब बताओ बॉलीवुड मूवी.
5: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
4: जेड से बताओ प्लेस.
5: ज़ूरिक.
4: जेड से बताओ थिंग.
5: ज़िप.
4: ओह माय गॉड.
2: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Good morning, it's 8:27 on the clock on this Tuesday. So, well, let's take a look at the capital. First of all, Abu Dhabi, where will you get traffic? Nowhere, anywhere. ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत मुसफा इंडस्ट्रियल E30 पर गोइंग टुवर्ड्स रब्दान, बट एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी स्मूथ फ्लोइंग. फिंगर्स क्रॉस्ड. 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. यू विल फाइंड द यूजुअल 5-7 मिनट की देर, नथिंग अनयूजुअल आउट देयर. देन इंडस्ट्रियल एरिया 6 में ईस्ट एंड वेस्ट जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलेगा. 4-5 मिनट एक्स्ट्रा तो आपको लेके ही चलना है. देन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा की तरफ जाती हुई S112 एंड देन S116 मलिया स्ट्रीट गोइंग टुवर्ड्स 611 इज ऑल्सो गेटिंग अ बिट बिजी. 611 पर एज यू गेट आउट ऑफ हेयर बराशी गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर हेडिंग साउथ ऑल्सो 4-5 मिनट की देर. एंड D62 बेरूत स्ट्रीट पर आज हेडिंग नॉर्थ राइट आफ्टर नादल हमार यू विल फाइंड 3-4 मिनट की देर.
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
8: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: वही समझ स्मिथ एक ही चीज को सुनकर घुंघरू टूटते हैं, दैट इज अस फैमिली स्टेकेशन.
1: पार्टिसिपेट इन समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almyrid Rasal Khaimah.
0: प्राइस इतना बड़ा है फैमिली स्टेकेशन है रिक्सॉस अल्मायरिड रसल खेमा के, एक व्हाट्सएप से बात नहीं बनेगी. इफ यू वांट टू गेट शॉर्टलिस्टेड कीप व्हाट्सएपिंग, द नंबर इज 0543091062. क्या व्हाट्सएप करना है? बीएसएस फॉर बिग समर सरप्राइजेस, स्पेस देकर अपना नाम, बीएसएस स्पेस योर नेम, कीप व्हाट्सएपिंग दैट टू 0543091062. वी गोना बी प्लेइंग द समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट इन जस्ट अ वाइल. अगर आपने, इफ यू परफॉर्म बेटर देन द पर्सन प्लेइंग अगेंस्ट यू इन कॉन्फ्रेंस, योर नेम गोज इन टू द ड्रॉ टू विन दिस फैमिली स्टेकेशन प्लस टू मूवी टिकट्स and an F&B voucher as well. Achanak, Govinda is in the news for various reasons. Aaj latest reason kya hai, batata hun kuch der mein. Keep it locked to Big 106.2, a part of the Funny Show Network.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 9:10।
1: Bollywood.

0: 6.2. The beat of Bollywood.
1: Spin big with Big Ticket.
2: 20 million dirham grand prize.
1: 1 million dirham big spin chance.
2: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
5: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
8: बर्फ तो दूर की बात है, लेकिन हाँ, रात को ह्यूमिडिटी काफी हो जाती है एंड विजिबिलिटी माइट गेट अफेक्टेड ऑल दिस वीक एट सर्टेन एरियाज. फॉग हो सकता है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल एट नाइट. राइट नाउ इट्स 35 डिग्री सेल्सियस, नाइस एंड ब्राइट सनी स्टार्ट टू दिस ट्यूसडे मॉर्निंग. ह्यूमिडिटी एट 61%, हाइज ऑफ 37 राइट नाउ, लोज ऑफ 33 डिग्रीज.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 9:24 on the clock, and I've got the two contestants ready with me on the phone line, ready to play the summer song contest. Let's say, sabse pehle, good morning to Madiha. Are you there?
2: Yes.
1: Madiha hai aapka naam ya Madhiya hai?
2: Madiha.
1: Madiha. Kaisi hain aap? How are you doing?
2: I'm good.
1: You sound very, very bored in life, yaar. Kuch to thoda energy to dikhao.
2: No, I was actually sleeping.
1: You were, what?
2: Yeah.
1: Picture this. She just thoda do minute ke liye aankh khuli, radio on kiya, contest hua, contest message kiya, wapis ho gayi. Aisa tha scene.
2: No. My husband went to work and then I have a baby, no? So I was making the baby sleep and then meri bhi aankh kaisi lag gayi mujhe, kya nahi raha.
1: Oh my god.
2: And the
1: god.
2: Phone was on vibrations.
1: So the baby is sleeping next to you right now?
2: Yeah.
1: ठीक है तब तो आप बिल्कुल आराम से बात करो, बट हाउ आर यू गोइंग टू शाउट, बिकॉज यू नीड टू शाउट योर नेम इन दिस बजर कॉन्टेस्ट. कैसे करोगे? लेट मी काइंड ऑफ, नहीं आप कहीं जाओ मैं तो, यू स्टे देयर. लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस मोहन. मोहन गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
1: ओके मोहन, इज इट ओके इफ मदीहा विस्पर्स? इज दैट ओके?
3: Yeah, it's okay.
1: So usually I ask you to shout your name. Today we are going to whisper the name, okay?
3: Whisper like
1: okay, because Madhya's baby is sleeping next to her. So we are going to whisper the names. Here's what's going to happen. Main aapko teen gaane ke kuch portion sunane wala hun. These are, you know, summer songs, holiday wale songs. Agar aapko lagta hai ki film ka naam aapko pata hai, to aapko apna naam whisper karna hai. Theek hai?
3: Silently
1: तो कैसे whisper करोगे यार? Silent तो मतलब zero हो गया ना volume.
3: Softly.
1: Try करते, मजा आएगा.
2: Okay. Can you explain it again? Like,
1: I'll explain. तो मैं आपको, it's a best of three contest, ठीक है? मैं एक एक करके, supposing मैंने आपको एक गाने का portion सुनाया, और फिर आपको अगर पता है फिल्म का नाम, तो आपको अपना नाम विस्पर करना है, लेकिन बिग ऐड करना है. सो मदीहा, इफ यू थिंक यू नो द फिल्म का नाम, यू गॉट टू से बिग मदीहा. एंड मोहन, व्हाट विल यू से?
3: बिग मोहन.
1: या बट यू गॉट टू विस्पर इट. ओके
3: चलो बिग मोहन.
1: या बिग मोहन.
3: ओके नहीं सुनाई देगा तो
1: नहीं सुनाई देगा, फिर क्या कर सकते हैं. लेकिन मजा, एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए देवी और सचिन. ठीक है, ये मदीहा इतनी जोर से हंसे क्यों? बेबी उठ जाएगा. ये पूरा रूल मैंने बेबी के लिए बनाया, और आप जोर से ठाके मार के क्रूर सिंह हंसी कर रहे हो.
2: ओके ओके
1: शांति. ओके एक बार टेस्ट करते हैं हमारा साइलेंट बजर. आर यू ऑलराइट? आर यू रेडी? इन 3, 2, 1 गो. वेरी गुड यार, मैंने बोला साइलेंट बजर तो आप लोग साइलेंट ही हो गए. नहीं, सॉफ्ट बजर, सॉफ्ट बजर. ओके, व्हेन आई से 3, 2, 1 यू गॉट टू शाउट योर नेम, बट पहले बिग. ठीक है?
2: Okay.
1: But don't shout it. Say it softly. Ready? 3, 2, 1.
2: Big Madiya.
1: Ah, very good. Very, very good. Okay. Are you guys? Are you guys ready?
3: Ready.
1: Okay. पहला गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाला. Ready?
3: Ready.
1: The first song is this one.
4: En esta noche la vida.
2: Big Madhya. Is it cocktail?
1: Cocktail is the wrong answer. Mohan, you want to go for it?
3: No, next.
1: What is the name of the film? Then nothing, yaar.
3: Ah, yeah. Confused.
1: तो ऐसे बोला, पता नहीं जैसे कि कौन सा तुक्का मारने वाला. जल्दी बोलो. भाई, you guys are terrible at this game. This is Pathan. Hello.
3: Yes.
2: Oh, yeah.
1: भाई बेशरम रंग, इनको पता नहीं तो मैं क्या पूछूं next. Are you ready? The next one, guys.
3: Ready.
1: Ready on the soft buzzer. The song number two is this one.
2: Big Madhiya.
3: Big one.
1: Madhiya, बोलो.
2: Big Madhiya. Welcome.
1: Welcome is the wrong answer. Mohan. मोहन, डोंट टेल मी आप भी वेलकम बोलने वाले थे.
3: ये सलमान खान का मूवी है.
1: सलमान खान का तो मूवी है, लेकिन कौन सा मूवी है?
3: टाइगर जिंदा है.
1: डिड यू जस्ट गूगल सर्च इट?
3: नो,
1: बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर. 1-0 इन फेवर ऑफ मोहन. अब हमें जाते हैं लास्ट आखिरी सवाल पर. मदीहा, अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मोहन will get his name into the draw. All right. Even if none of you are able to answer, Mohan's name goes into the draw. Fair enough?
2: How is it? Because he just answered one, no?
1: Yeah, so it's best of three, na?
2: But he couldn't answer the first one, no? So if I answer, it gets... Okay, fine. But is it not a draw? Because he answers the second one. And if I doubt myself.
1: Aapne bahut lamba logic diya, lekin bilkul galat logic diya. Theek hai, best of three. This is the third and final. If you get this, we go to a tiebreaker. If not, then Mohan's name goes into the draw. All right?
2: Oh, yeah, that is what I meant.
1: Huh? Ready?
2: Okay.
1: In 3, 2, 1, this. Madiha.
2: I don't know. I don't know
1: is the wrong answer. Mohan, do you know the correct answer?
2: No, is it...
3: हनी सिंह का है लेकिन
1: मेरे को भी हनी सिंह का तो है लेकिन कौन सा है बताओ
3: बकला गया मैं भी
1: है
3: दिमाग में है लेकिन
1: क्या बोले आप बौखला गए डिड यू से बौखला गया
3: बकला गया बोल मतलब दिमाग में आ रहे पूरा याद है पूरा भिजे सब कुछ मालूम है लेकिन नाम नहीं आ रहे आज बोले पानी पानी पानी पानी पानी पानी
2: हनी सिंह का गाना ही बनाई गाना नंबर
1: वो तो उनको भी पता है हनी सिंह का गाना है यारिया टू क्या किया आपने दैट इज द करेक्ट आंसर That is amazing, यार. मतलब आखिरी मौके पे आके आपने मारा चौका लेकिन मारा जरूर अब हम लोग चलते हैं टाई ब्रेकर क्वेश्चन की ओर ओके टाई ब्रेकर क्वेश्चन में मैं अब आपसे ना फिल्म नहीं पूछने वाला हूँ बिकॉज आई हैव काइंड ऑफ गिवन अप ऑन यू गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू आस्क यू द आर्टिस्ट का नाम ये गाना सुनो और बताओ ये गाना जो समर का गाना है ये कौन से आर्टिस्ट का है ओके
2: ओके
1: मोहन Madiha,
3: okay, ready?
1: The song is this one.
5: Ek saade milan diyan khabra.
3: Big Mohan.
1: Mohan.
3: Big Mohan.
1: Yes.
3: Ranbir Kapoor.
1: Artist, singer.
5: Ek saade milan
3: diyan khabra.
1: Galat jawab. Madiha, you want to take a shot? Tukka maro, sahi ho gaya to naam draw mein.
2: I think it is...
1: मोहन मदिहा मैं आपको फर्स्ट नेम देता हूँ आपको लास्ट नेम देना है ठीक है रेडी ऑन द बजर बोथ ऑफ यू ए पी
2: अरिजीत
1: ए पी का सरनेम
2: अगेन
1: सरनेम क्या ए पी AP Dhillon is the correct answer. यार क्या कर रहे हो यार क्या कर रहे हो अच्छा चलो मैं आपको एक और देता हूँ ठीक है लास्ट वाला इसके बाद मैं कॉन्टेस्ट ही खारिज कर रहा हूँ ठीक है मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म में हीरोइन का नाम क्या था ओके रेडी दिस इज द सॉन्ग
3: Big Mohan.
1: Mohan say.
3: Kareena Kapoor.
1: Madiha, you want to take a chance?
2: Deepika Padukone.
1: She owns an IPL team.
3: Anushka.
1: कौन सी IPL team own करती है?
3: Preeti Zinta
1: is the correct answer. Oh my God. Guys, I need a vacation. I'm calling my boss right now. I am going to go on this staycation. You guys don't deserve this at all. Jitni mehnat, I don't get paid for this much, bhai. I'm telling you, this is like way above my pay grade. Itni mehnat kaun karta hai, yaar, contest mein?
3: I will take you with me.
1: No, I don't want to go with you.
3: Just
1: oh my God, yaar. क्या बोला था आपने मैं बौखला गया हूँ मोहन ये क्या लेवल है यार मतलब क्या कर रहे हो यार नहीं आपको कुछ नहीं पता है प्लीज डोंट लाई ये दो टिकट जो आपने जीत लिए हैं यू हैव टू यूज देम ओके थोड़ा पैसा खुद भी खर्च करो जाओ थोड़ी मूवीज देखो यार Oh my
2: God. He's very single. You tell him to give it to me.
1: Madhya, aap to rehne do, theek hai na, please.
3: But I'm lucky. I get the same
1: opportunity. No, you are lucky is the understatement of the year. Bhai, 8 minutes se contest kar raha hu main, meri naukri ja sakti hai. Congratulations, Mohan, chalo.
3: Oof. Thank you.
1: Oh, Madhya, thank you so much. Yaar, absolute pleasure talking to you, but better luck
2: what
1: next time. Oh my God.
2: What did he win?
1: His name has got into the draw to win a staycation at the Rixos Almirid in Russell Khema, plus on the spot 2 movie tickets and an F&B voucher. Congratulations, Mohan. Mujhe maaf karo.
2: Congratulations.
3: Thank you so much.
1: Mohan or Madhya, it is now time for me to hang up. Oh my God, after all of this, apologies are in place to all the people listening in. Yaar, matlab, I couldn't expect. Anyways, bahut ho gaya meri taraf se, but don't forget, it's a fun contest, comes up every day in the morning. Big summer surprise made possible by our presenting sponsor, Skechers, title sponsor, Papa John's, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमैरिड रसल खेमा. डोंट फॉरगेट, कल सुबह एक बार फिर ये कॉन्टेस्ट आएगा और अब तक तो आपने पहचान ही लिया होगा. जब तक कि आप जीत नहीं जाते, मैं मानता नहीं हूं. 106.2

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: When your skin feels good, confidence follows you everywhere. At Zuleika Hospital and Medical Center, our dermatology experts treat everything from acne, pigmentation and hair loss to skin allergies and aging concerns. Get healthier and clearer skin that looks and feels natural with our exclusive and affordable dermatology packages. Zuleika cares for your skin, for you. Call 600-52442 to book your appointment.
0: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
2: Ready, throw!
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's, order now.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: It's 9:37. Oh my god, I am still out of breath from that contest that I just played here. But yeah, let's start with the capital, Abu Dhabi. Aapko traffic milega. हल्का हल्का रोज ही होने लगा है मफरक इंडस्ट्रियल पे गोइंग टुवर्ड्स बनियास 4-5 मिनट की देर E11 की मैं बात कर रहा हूँ जस्ट अ बिट ऑफ ट्रैफिक गोइंग बिटवीन E30 एंड E22 एज वेल एट द इंडस्ट्रियल एरियाज आउट देयर मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी में हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको मिलने वाला है चलते हैं दुबई शारजा की ओर 311 E11 द यूजुअल हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा बोथ द आर्टरीज यू विल फाइंड 7-9 मिनट्स का डिले एंड ट्रैफिक जमा होना शुरू हो गया E44 पर अलकूज 4th की तरफ साउथ बाउंड ट्रैफिक एंड ऑल्सो एट द जंक्शन ऑफ JVT 311 एंड E44 यू विल फाइंड 3-4 मिनट की देर ऑल्सो शेख ज़ायद रोड पर ट्रैफिक इज पिकिंग अप राइट आफ्टर ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट हेडिंग साउथ
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: Paida to main bhi sharif hua tha, par sharafat se apni kabhi nahi bana. Zara hum bhi to dekhe ki humse bada shaitan kaun paida ho gaya.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:06।
1: Bollywood.

0: बहुत सारी चीजें यहाँ पर यूए में होती रहती हैं जिसके बारे में सुन के लगता है कि यार ये और किसी कंट्री ने क्यों नहीं किया है।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: For example, you know what's in the news this morning? It's something about Dubai Metro. It's not about the train, it's not about the station, it's about one part of the station. It is about, you know, the upgrade of the escalators that is happening at Dubai Metro Station. एक मेजर रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। 262 एस्केलेटर्स हैव बीन ओवरहॉल्ड, दैट्स अबाउट 63% ऑफ ऑल एस्केलेटर्स इन दुबई मेट्रो।

0: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy, through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
1: Teek Savadas on this Tuesday morning. It's time for the big Bollywood quiz.
2: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Bahut hi aasan sawal. Aaj main aapko ek scene sunane wala from one of my all-time favorite Bollywood movies. मतलब all time top 3 के अंदर ही आती है as far as I am concerned. इसको सुनिए, बताइए कौन सी फिल्म में समीर एंड सुबोध वेंट फॉर अ ड्राइव एंड देन समीर काइंड ऑफ हैड सम पछतावा लेटर ऑन.
3: मैंने गलती की जो उसके साथ ड्राइव पे चला गया.
4: और यहाँ देखो समीर, 15 सितंबर को मैं पूजा से पहली बार यहीं मिला था और ठीक 7 दिन बाद 22 सितंबर को हम यहाँ आइसक्रीम खाने आए थे.
3: सुबह तुम्हें टाइम याद नहीं?
4: ऑफ कोर्स याद है, ठीक 5:55 हुए थे.
1: कौन सी फिल्म में ये ह्यूमन कैलेंडर सुबोध थे, पीछे बैठे हुए समीर. इफ यू नो द फिल्म का नाम, I mean, I'm sure you got that. You are sitting in that car right now. If you're a big Bollywood fan, agar chote mote bhi hai, tabhi aapko jawab pata hoga. If you want to win 2 open movie tickets, give me a call right now. 800-1062. Kaunsi Bollywood film mein one of my all-time favorites was Subodh and Sameer. Number 800-1062.

0: with Paisa right here on Big 106.2. चलो इमरान से पूछते हैं, विद्मी ऑन द फोन लाइन. इमरान भाई, आपने कभी किसी से कहा कि मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी?
1: सर जी, मेरी वाइफ को बहुत दफा कहा है. और मेरी वाइफ कहती है कब करोगे, वो दिन कब आएगा.
0: अरे यार क्या बात है, फुल पॉइंट्स फॉर ऑनेस्टी. इमरान भाई वेलकम टू द शो, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक? मंगलवार के दिन सब मंगल? वेरी नाइस यार. सो इमरान भाई, लास्ट टाइम मैंने आपको एक डायलॉग सुनाया था कि ह्यूमन कैलेंडर, और जिसका नाम सुबोध था, और पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं सैफ अली खान, एंड ही डिड नॉट रियली, ही वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड. वो कह रहे थे कि यार मुझे प्लीज इस गाड़ी से कोई निकालो. कौन सी फिल्म है ये?
1: तो ये मूवी दिल चाहता है.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट इमरान भाई, कांग्रेचुलेशंस. ये दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए. अब जाकर आप कोई भी मूवी देखो जो आपका मन करे. लेकिन जाते जाते आपको पूछना चाहता हूँ, इज दिस वन ऑफ योर फेवरेट मूवीज एज वेल? आपको पसंद है ये फिल्म?
1: सर बहुत दफा देखी है, आई थिंक मोर देन 10 या 11 टाइम्स देखी होगी.
0: मैंने भी खुद 6 बार जब रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल में देखी थी. इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ अ मूवी. बट अगर मैं आपसे पूछूं, लेट मी लाइक ट्विस्ट द क्वेश्चन, अगर मैं आपकी मिसेस से पूछूं, बिकॉज शी साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो उनसे अगर मैं पूछूं कि इमरान भाई कौन से दो इनमें से कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं फ्रॉम दिल चाहता है, इज इट आमिर खान, यानी कि आकाश, जो कि यू नो वो मस्तीखोर मस्कर हैं इन द ग्रुप, ही ऑलवेज प्लेज अ प्रैंक ऑन अदर पीपल, इज इट सैफ अली खान का कैरेक्टर समीर, जो कि हाय बेचारा बट विद अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और इज इट सिड, मैं नहीं बल्कि वो अक्षय खन्ना, जो कि बहुत इंटेंस हैं एंड इज अ आर्टिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो हु डू यू रिजेंबल द मोस्ट?
1: मेरी मिसेस कहेंगी आमिर खान.
0: हैं
1: जी.
0: आपकी लव मैरिज थी या अरेंज है, क्या था?
1: सर अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज के बाद बहुत लव हुआ.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो ग्रेट आंसर यार, ग्रेट आंसर. यू आर इन गुड फॉर्म टुडे, हैव अ वंडरफुल डे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कांटेस्ट, एंड कांग्रेचुलेशंस.
1: थैंक यू वेरी मच सर,
0: टेक केयर. इमरान भाई हमारे आज के विनर हैं, डोंट फॉरगेट. एंड
1: कॉल किया और आज टिकट भी सर जीत लिया.
0: थैंक यू सो मच यार, आपने कॉल किया, यूं ही आप कॉल करते रहिए और हमें सुनते रहिए, है ना?
1: Thank you, sir. Thank
0: Take care. That
1: you.
0: is
1: the. Thank you.
0: Thank you. Thank
1: and,
0: you for
1: getting started. Started you, so have a nice day. Take care of yourself.
0: And you too. And you too. And you too. And it is a Tuesday morning, and that is Imran, हमारे आज के winner हैं. Don't forget, रोज सुबह ये मौका to flex a bit of Bollywood muscle and walk away with two open movie tickets in the Big Bollywood Quiz.
2: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 10:45 on this Mangalwar, 14th of July. It's time for me to sign off from The Big Breakfast.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: ये तो हो गई ब्रेकफास्ट की बात, लेकिन अगर आप एक डाइनिंग एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, फोर इनक्रेडिबल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस अंडर वन रूफ एट ताज दुबई, मिस्टेस ट्री हाउस, बॉम्बे ब्रासरी एंड द एलोक्वेंट एलिफेंट, सोक इन ब्रेथटेकिंग दुबई स्काईलाइन व्यूज, वाइब्रेंट नाइट लाइफ एट ट्री हाउस, ऑफ कोर्स इंडल्ज इन बोल्ड एशियन फ्लेवर्स, हु डजंट नो मिस्टेस, एंड कंटेम्पररी इंडियन क्विजीन एट बॉम्बे ब्रासरी. कैच अप विद फ्रेंड्स, एंजॉय योर फेवरेट बेवरेजेस एट द एलोक्वेंट एलिफेंट, डोंट मिस द आफ्टर डार्क ब्रंच एट मिस्टेस एवरी सैटरडे शाम 7 से लेकर 10:30 तक. ऑन दैट amazing note, I'm going to be taking your leave, but don't forget to follow us on socials. We are 106.2 Big FM, and wahan par humko bahut kuch dalte hain for you to take part in. Got poll questions, got trivia questions, got behind the scenes masti mazak, and lots of reels for you to take part in. Also, you can follow me on socials. I'm Sid Seth, SIDSETH. So till tomorrow, sharp at 7, not at 6. Enjoy the rest of your Tuesday. Bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Bollywood movie?
1: Dangal.
0: Very good. D say place.
1: Delhi.
0: Ab D se batao thing.
1: Door.
0: यार, अरे यार, ये क्या हो रहा है? चलो राउंड टू. ये तो बहुत इजी राउंड दिया था मैंने. राउंड टू. ओके, जेड, जेड फॉर ज़ोहरा. आप बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम.
1: रीना दामान.
0: वेरी गुड. अब बताओ बॉलीवुड मूवी.
1: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
0: जेड से बताओ प्लेस.
1: ज़ूरिक.
0: जेड से बताओ थिंग.
1: ज़िप.
0: ओह माय गॉड.
2: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Beat Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.com.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक 107 ऑन द बिग क्लॉक. गुड आफ्टरनून.
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 54% पे। इट इज अ ब्राइट सनी डे, लोज आज जाएंगे 33 तक।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat.
2: बॉलीवुड 1:15 हो चुके हैं. हाँ जी, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. दिस इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा. फिलहाल हम खेल रहे हैं द बिग बॉलीवुड अंडर कवर. आज मैं क्लूज देने वाली हूँ अबाउट अ सेलिब्रिटी. मेल है, फीमेल है, चलो बता देती हूँ यार. फीमेल सेलिब्रिटी है. क्लूज ध्यान से सुनो अभी, ठीक है. She was a very, very good student, a very bright student. In fact, she scored 95% in her 12th boards and dropped out of Boston University acting career pursue करने के लिए. इनके father जो है veteran actor रहे हैं. इनकी mother classical singer है. And I did not know that she is the grand niece of legendary singers Lata Mangeshkar and Asha Bhosle. ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. She shot to massive stardom. इनका breakthrough जो था इस character से था. इन्होंने आरोही का character play किया था एक 2013 की romantic musical movie में. किसकी बात कर रही हूँ मैं? She is literally 39 years old, but 29 लगती है. पिछले I don't think 15 साल से वो एक दिन भी एज हुई है. वो I do not think so. She is the most beautiful, most evergreen, I feel. Again, चार clues. 95% score किए 12 boards में. College होके acting pursue कर दिया. इनके father veteran actor है, mother classical singer है. She is the grand niece of legendary singers Lata मंगेशकर और आशा भोसले. एंड इनका मैसिव स्टार्डम वाला मोमेंट था हर ब्रेक थ्रू रोल, विच इज आरोही का जो कैरेक्टर प्ले किया था 2013 की एक रोमांटिक म्यूजिकल में. 29 की लगती है लेकिन असल में 39 की है. किस फीमेल एक्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ? इफ यू थिंक यू नो द आंसर, गेट कॉलिंग. टोल फ्री नंबर है 800-1062. दैट्स 800-1062.

0: बचाओ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zuleika Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
2: Mugembo, khush hua.
3: क्या करते हो रोहित?
4: फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ.
3: अरे आज से खेलते हैं. वाह वेरी नाइस. क्विकली नेम तीन बॉबी देओल की मूवीज.
4: बरसात.
3: अरे वाह. टिन टिन टिन टिन. ये लो एक में ही खत्म.
4: बिच्छू.
3: अरे हो गया बिच्छू. 5 सेकंड के अंदर फटाफट खेलने वाला गेम है. क्विकली नेम थ्री थिंग्स दैट यू पिक फ्रॉम अ होटल रूम.
4: साबुन, टावल, शैम्पू.
3: अरे है टावल भी ले जाते हो? हैं वो अलाउड नहीं होता है. वैसे मैं बता रही हूँ आपको, टावल लेना अलाउड नहीं होता है. हाँ शैम्पू सोप आप ले जा सकते हो, टावल मत लेके जाया करो, नाम बदनाम हो रहा है हम सबका. तीन लड़कियों के नाम बताइए जो ए से शुरू होते हैं.
4: आरती, आकांक्षा.
3: अरे है और आरती आकांक्षा में गाड़ी रुकी. कौन है आरती, कौन है आकांक्षा?
4: पता नहीं यार.
3: झूठ.
4: तो नाम आया.
3: झूठ. होगी कोई स्कूल कॉलेज वाली पुरानी.
4: हाँ.
3: है ना, तो दोनों थी कि
4: नहीं,
3: अच्छा
4: नहीं.
3: एक थी आरती थी कि आकांक्षा थी?
4: कोई भी नहीं था.
3: कितना झूठ रोहित, कितना झूठ. ऐसी थोड़ा ना एवी नाम आरती और आकांक्षा आउट ऑफ द ब्लू आ जाएंगे.
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Traffic हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड. थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा. वर्का 1 से ये शुरू हो रहा है, DAD 9 तक जाता हुआ. थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिल जाएगा लतीफा हॉस्पिटल के पास. एक कार एक्सीडेंट हुआ है. दिस इज स्पेसिफिकली इफ यू आर अराउंड E11 शेख राशिद रोड हेल्थ केयर सिटी के पास, तो दैट इज कॉजिंग अबाउट 10 मिनट डिले. एक और कार एक्सीडेंट रिपोर्टेड है एग्जिट 30 के पास ऑन E44 अलखेल रोड अराउंड D3. दिस इज दुबई अलैन रोड. दैट इज causing about a 12-minute delay as well. Any other traffic update, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 0543-091062 पे. This is The Big Mix with me, Zora.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत. मैं अपनी favorite हूँ.
1: ये है Zora on The Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बिपाशा, बिपाशा की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन किस फीमेल सेलिब्रिटी की बात हो रही है? लेट्स गेट इनटू दैट। फिलहाल सिंगर के नाम ले लेती हूँ मैं, श्रद्धा पंडित, सिंगर के नाम में ही आंसर है।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: हाँ जी, good afternoon, Zohra के साथ up on the Big Mix. फिलहाल बिपाशा तो नहीं, लेकिन आयशा हमारे साथ फोन पे जरूर है. Hi आयशा, how are you?
2: Hi, I'm fine. How are you, Zohra?
0: Very, very well. आयशा क्या करते हो, क्या कर रहे हो?
2: मैं actually finance department में होती हूँ और अभी lunch break के लिए घर आई हूँ.
0: Finance department वालों से मुझे बड़ा डर लगता है.
2: हम कुछ भी नहीं करते
0: बेचारे। That's the problem. आप कुछ भी नहीं करते हो जब करना होता है।
2: हम सब मन से काम करते हैं।
0: आप एड़ा बनके पेड़ा खाने वाले काम करते हो।
2: क्या हो रहा है?
0: चलो यार आयशा, आपको मुझे बताना था ये क्लूज सुन के कि मैंने किसकी बात की है। शी स्कोर 95% बोर्ड्स में, कॉलेज छोड़ के एक्टिंग शुरू कर दिया। इनके पापा जी वेटरन एक्टर है, मम्मी जी क्लासिकल सिंगर है, ये ग्रैंड नीस है लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी की। एंड इनका स्टारडम वाला मोमेंट था एज आरोही इन द 2013 रोमांटिक म्यूजिकल। 39 के होने के बावजूद 29 की लगती है। कौन है ये क्यूट सी लड़की, जल्दी बताओ।
2: ये थी श्रद्धा कपूर।
0: बिल्कुल सही। कितनी क्यूट सी है यार ये, मतलब ऑनेस्टली
2: इवन ऑन 39 की लगती हूँ, लेकिन लगती
0: 49। अरे मुझे लगा उल्टा बोलोगे। किसी ने नहीं देखा, जितना मन में आए फेंक सकते हो आप, फेंक लो आप। अच्छा, श्रद्धा कपूर के फैन हो आप?
2: ऑलमोस्ट सारी मूवी
0: तो बॉलीवुड के ओवरऑल आप बहुत बड़े फैन हो। फाइनेंस वालों का यही काम है, फाइनेंस छोड़ के हर चीज में इंटरेस्ट होता है आपका। मूवीज ही देखना होता है। बिल्कुल सही यार आयशा, मजा आ गया आपसे बात करके। चलो अगर आपने बताया कि श्रद्धा कपूर के फैन हो, ये डायलॉग कंप्लीट करो ठीक है। वो स्त्री है?
2: नहीं, मैं नहीं हूँ।
0: अरे वो स्त्री है का डायलॉग कंप्लीट करो। वो स्त्री है डैश डैश डैश है। नहीं यार ये कंप्लीट नहीं किया आपने, मैं नहीं मानती आप फैन हो। इतनी लंबी लंबी आपने छोड़ी है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं फ्री टाइम ऑब्सेशन। एक डायलॉग कंप्लीट करो, मैं नर्वस हूँ, मैं नहीं बोलती।
2: अरे इवन मैं उनके फादर का नाम भी भूल गई।
0: फादर का नाम भूल गई, शक्ति कपूर का नाम भूल गई आप। आपकी बातों में कोई शक्ति नहीं है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, ये डायलॉग कैसे भूल सकती है ये लड़की। ये आयशा है, ये कुछ नहीं कर सकती है। नहीं आयशा, बहुत मजा आपसे बात करके। यू सीम लाइक अ वेरी वेरी चार्मिंग पर्सन टू बी अराउंड, जस्ट हाउ श्रद्धा कपूर इज। लवली लवली टॉकिंग टू यू आयशा। चलो जाके थोड़े पैसे बना लो आप अभी। चलो हाँ, आई सी यू देयर फॉर लंच। बाय आयशा, हैव अ ग्रेट डे। आयशा विद अस ऑन द फोन लाइन, यही है द बिग बॉलीवुड अंडरकवर जो आपको खेलना होता है मेरे साथ। फर्स्ट राउंड में यही खेल रही होती हूँ, इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ क्लूज देती हूँ, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई हु आई एम टॉकिंग अबाउट। इन द नेक्स्ट आवर ऑन द बिग बॉलीवुड टी भी आपके लिए बहुत भर भर के प्यारी प्यारी चाय, गरम गरम गॉसिप आपके लिए लेके आऊंगी। दिस इज द बिग मिक्स, माय नेम इज ज़ोरा विद यू अंटिल 5।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: रश्मीत कौर ऑन द लीड ऑफ दिस वन, सचिन जिगर का म्यूजिक, दिलबर की आंखों का फ्रॉम द मूवी थामा, राइट हियर ऑन द बिग मिक्स. और आप भी थाम के रहिएगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट आवर वी आर गोइंग टू स्पिल सम टी ऑन द बिग बॉलीवुड टी. व्हाट इज ट्रेंडिंग आज बॉलीवुड में, क्या चल रहा है, विच न्यू मूवी एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट्स गेट इनटू ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट आवर. जोहरा के साथ हो आप, दिस इज द बिग मिक्स ऑल द वे एंटिल 5 पीएम राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: Big 106.2.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: America, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Emily Thomas. France is marking its National Day with Emmanuel Macron leading the military parade in Paris for the final time as president. Allied leaders from across Europe are attending, including Volodymyr Zelensky of Ukraine. Wildfires raging in a forest south of Paris have spread across nearly 20 square kilometres. Firefighters hope to bring the blaze under control today. France's interior minister said two arrests have been made on suspicion of arson. The Supreme Court in Brazil has banned the presidential candidate Flavio Bolsonaro from visiting his father, Jair Bolsonaro, for 90 days while under house arrest. The court blamed Jair Bolsonaro for violating his terms of detention. Chinese exports have grown at their fastest rate in almost 5 years, buoyed by the AI boom. June's overseas shipments rose 27% compared to the same time the year before, beating all expectations. And the fossilised remains of a Tyrannosaurus rex will be auctioned later today in New York and may fetch the highest price ever for dinosaur remains. BBC News.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बच जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा I love you.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Absolutely right. 2:02. हाँ जी, जोहरा के साथ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. दिस इज द बिग मिक्स. आई कीप यू कंपनी 4 घंटों के लिए, 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक. फिलहाल इस दूसरे घंटे में आई मेक श्योर टू ब्रिंग यू ऑल द फ्रेश फ्रेश टी, द फ्रेश फ्रेश गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री. एनी न्यू मूवीज, किसी की शादी हो रही है, किसी के बेबीज हो रहे हैं, किसी की शादी टूट रही है, ऑल दैट एंड मोर. वट एवर इज ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री, दैट्स वट आई सर्व टू यू ऑन हॉट प्लैटर. इस घंटे भी हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यू मूवी दैट सीम्स इंटरेस्टिंग ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द कास्ट. ट्रेलर शायद इसका रिलीज हुआ है, सो आई एम गोना गो हैव अ क्विक लुक एंड देन वील टॉक अबाउट दैट. बट लेट्स किक स्टार्ट द आवर. इन द मीन टाइम, धुरंधर द रिवेंज से गाना, रन डाउन द सिटी आपके लिए ऑन द बिग मिक्स.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 2:05 वेरी गुड आफ्टरनून। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&. Go for more.
4: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी कम हो गई है, 50% पे है फिलहाल। ऑल्सो इट इज पार्टली क्लाउडी। ये क्या हो रहा है, हाईज आज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बट लोज आर एक्सपेक्टेड टू टच अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग।
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: I love movies with like a refreshing topic, a refreshing angle, and yahan pe aise lag raha hai, ye feeling aa rahi hai that this movie might just impress us. Adarsh Bal Vidyalaya, iska maine abhi trailer dekha hai. Rebellious kids doing absolutely unhinged things, but I feel like isse zyada सबसे ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं बड़े भी बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले इस मूवी के साथ. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई लव द टू नेम्स इन द लीड रोल्स हियर. के मेनन इज लीडिंग द स्टार कास्ट अलॉन्ग विद अर्चना पुरन सिंह, टू पीपल दैट आई एब्सोल्युटली अडोर. एंड ट्रेलर देख के आपको पता चल जाएगा कि क्यों, बट इट्स एक्चुअली सो फनी. देयर सम क्लिप्स दैट यू नो रियली रियली हैड मी क्रैकिंग.
2: हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स?
3: मैम ये तो जेनेटिक्स की माँ ही बता सकती है.
4: भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ.
5: चिकन 65.
1: Absolutely love it. I feel like this movie is going to be something that's going to blow everyone's minds. Amazon Prime pe aa rahi hai. It's not going to be hitting the big screens, but I feel like these movies have a lot more impact these days. More than the movies jo bade parde pe release hoti hai, sometimes OTT pe aisa ek hidden treasure aapko mil jata hai. It flies under the radar, but once you catch a hold of it and watch the movie, it just stays with you. And I feel like this movie definitely has that potential. Nahi dekha iska trailer, to go check it out on YouTube, aapko mil jayega. Adarsh Bal Vidyalaya. K.K. Menon on the lead, and he is doing pura justice to the movie and the character. Yeah.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, इट्स 3:03 ऑन द बिग क्लॉक।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 3:15 on the dot. Zohra ke saath ho aap. This is The Big Mix. Sham 5 baje tak. Filhal, a very, very interesting conversation for you, yaar. On What's the Big Deal today. Aaj hum baat kar rahe hain about some habits jo, you know, hamari rahi hai kaafi time se. But hume lagta hai, yaar, ye to harmless si cheez hai. Isse kya hi bura ho jayega? Isse kisi ka kuch bura nahi ho raha hota. So we continue to do so. But abhi mere saamne ye study according to which there are some habits which could secretly, silently be harming your body in horrible, horrible ways that you should immediately stop. Hai na? Okay, let's start with number one. Ye cheez, I think 99% of the people do. Keeping your phone under your pillow or right next to your pillow. Jab aap sote ho, to right next to your pillow aap rakhkar apna phone sote ho. So the notifications, all the light that is coming out of the phone, the heat, everything kept near your head, it can actually interfere with your sleep quality and it can definitely and most possibly make it harder for you to rest properly. Fir aap complain karte ho ki neend nahi mili, puri neend nahi mili. That is because of your phone. Literally jo mummy ya taane maar rahe hote na, phone ki wajah se ho raha hai sar dard. Phone phenk do side mein. Do not keep your phone next to your pillow or under your pillow. Number two, eating your food very, very hot. Ekdam garam garam khana hum khao na, kuch log bolte garam garam chai peene ka maza aata hai. Chuskiyan maarne ki zarurat nahi hai, phookne ki zarurat nahi. Nahin, phookne ki zarurat hai, because any hot food or drinks can irritate the esophagus and has been associated with a higher risk of damage over time in some studies. So एकदम गरम गरम खाना नहीं खाना होता है. दिस इज़ अनदर हैबिट जो मेरी भी है. मुझे लगा था हार्मलेस होगी क्योंकि मैंने कहीं पढ़ लिया था कि नकल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस होता है. नहीं होता है, बट क्रैकिंग नकल्स इज़ जनरली कंसिडर्ड अ लिटिल लिटिल हार्मफुल. यूजुअली हार्मलेस बट हो सकता है. एक्सेसिव तरीके से अगर आप इसको करो, फ्रीक्वेंटली करो, तो जॉइंट मैनिपुलेशन हो सकता है. इट कैन यू नो इरिटेट द टिश्यूज दैट सराउंड योर फिंगर्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फोर्थ सबसे बैड हैबिट बहुत सारे लोगों को है, स्लीपिंग ऑन योर स्टमक. नहीं सोना होता, उल्टे मुंह नहीं सोना होता है. इट कैन एक्चुअली प्लेस एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन द नेक, योर लोअर बैक, योर स्पाइन. इट कैन कॉज डिसकंफर्ट एंड पेन फॉर अ लॉट ऑफ स्लीपर्स. इस वजह से भी आपको नींद नहीं आ रही होती. सो आउट ऑफ दीज फोर हैबिट्स, व्हिच ऑल हैबिट्स डू यू हैव एंड व्हिच ऑल हैबिट्स डू यू थिंक यू कैन लेट गो ऑफ इजिली, एंड सम हैबिट्स दैट यू फील लाइक नहीं, ये इसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं होगा. लेट मी नो 800-1062 पे और डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, दैट इज 106.2 बिग एफएम.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixo's Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Listen to her every day.
3: Mugembo, khush hua.
4: क्या करते हो रोहित?
5: फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ।
4: अरे आज से खेलते हैं। वाह वेरी नाइस। क्विकली नेम तीन बॉबी देओल की मूवीज।
5: बरसात।
4: अरे वाह। टिन टिन टिन टिन। ये लो एक में ही खत्म।
5: बिच्छू।
4: अरे हो गया बिच्छू। 5 सेकंड के अंदर फटाफट खेलने वाला गेम है। क्विकली नेम 3 things दैट यू पिक फ्रॉम अ होटल रूम।
5: साबुन, टावल, शैम्पू।
4: अरे है, टावल भी ले जाते हो? हैं, वो अलाउड नहीं होता है। वैसे मैं बता रही हूँ आपको, टावल लेना अलाउड नहीं होता है। हाँ शैम्पू सोप आप ले जा सकते हो, टावल मत लेके जाया करो, नाम बदनाम हो रहा है हम सबका। तीन लड़कियों के नाम बताइए जो ए से शुरू होते हैं।
5: आरती, आकांक्षा।
4: अरे है, और आरती आकांक्षा में गाड़ी रुकी। कौन है आरती, कौन है आकांक्षा?
5: पता नहीं यार,
4: झूठ
5: नाम आया।
4: झूठ होगी कोई स्कूल कॉलेज वाली पुरानी।
5: हाँ।
4: है ना, तो दोनों थी के?
5: नहीं,
4: अच्छा
5: नहीं।
4: एक थी आरती थी क्या, आकांक्षा थी?
5: कोई भी नहीं था।
4: कितना झूठ रोहित, कितना झूठ। ऐसी थोड़ा ना एवी नाम आरती और आकांक्षा आउट ऑफ द ब्लू आ जाएंगे।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक। 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 54% पर पहुंच चुकी है। इट इज ब्राइट एंड सनी, पार्टली क्लाउडी, लोज विल टच अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग।
2: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

इट ब्रिंग्स आउट द इनर चाइल्ड इन मी. यार नेम प्लेस एनिमल थिंग इतने शौक से हमने बचपन में खेला था, उसी का मैंने एक ट्विस्टेड बॉलीवुड वर्जन बनाया है, अ लिटिल मोर फन. ऑनेस्टली बड़े होते होते कुछ तो हमें चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एनिमल्स के हम नाम नहीं बोलते रह सकते. सो इफ यू थिंक यू आर गुड विद नेम प्लेस एनिमल थिंग, इसका बॉलीवुड वर्जन ट्राई करो, मजे आ जाएंगे आपको. ऑल यू गॉट टू डू टू प्ले विद मी इज कॉल अस ऑन आवर टोल फ्री नंबर, दैट्स 800-1062. कॉल मी 800-1062 पे एंड प्ले नेम प्लेस मूवी थिंग विद मी. Slow.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, 4:05 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Missed your morning buzz? Yes or no?
6: आपको पसंद है ये फिल्म?
7: सर बहुत दफा देखी है, more than 10 या 11 times देखी होगी।
6: मैंने भी खुद 6 बार जब रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल में देखी थी। It's just that kind of a movie. But yeah, let me like twist the question. अगर मैं आपकी मिसेस से पूछूं, because she sounds very interesting. तो इमरान भाई इनमें से कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं फ्रॉम दिल चाहता है? इज इट आमिर खान, यानी कि आकाश मस्कर है इन द ग्रुप, ही ऑलवेज प्लेज अ प्रैंक ऑन अदर पीपल? इज इट सैफ अली खान का कैरेक्टर समीर, जो कि हाई बेचारा बट विद अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? और इज इट सिड, मैं नहीं बल्कि वो अक्षय खन्ना, जो कि बहुत इंटेंस हैं एंड इज आर्टिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन? सो हु डू यू रिजेंबल द मोस्ट?
7: मेरी मिसेस कहेंगी आमिर खान
6: है
7: जी।
6: आपकी लव मैरिज थी या अरेंज है, क्या था?
7: सर अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज के बाद बहुत लव हुआ।
6: वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ग्रेट आंसर यार, ग्रेट आंसर। यू आर इन गुड फॉर्म टुडे।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 37 डिग्री सेल्सियस है बाहर, थोड़ा थोड़ा सा सनी, थोड़ा थोड़ा सा क्लाउडी, ह्यूमिडिटी ऑल्दो स्टिल एट 57%। इट इज अ वेरी वेरी ह्यूमिड डे। आज हाईज इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, लोज आर एक्सपेक्टेड टू टच अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग। अ वेरी गुड आफ्टरनून, यू आर विद मी ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही, जोहरा के साथ आप ऑन द बिग मिक्स शाम 5 बजे तक. फिलहाल हम खेल रहे हैं मेरा बहुत ही फेवरेट गेम.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie.
1: Yes, that is right. Name, place, movie, thing. Game का नाम है, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है उनका नाम जान लेते हैं. हेलो.
3: हाय, दिस इज रिया.
1: हाय रिया, हाउ आर यू?
3: I am good. This is my first time doing something like this. So this is a very, very new experience.
1: You seem very chill considering this is your first time. Like, अरे देख लेंगे, जो ना कर लेंगे.
3: हाँ,
1: कॉल किसका पैसा जा रहा है, जितनी बात करनी है करेंगे. अरे लेट्स गो रिया, इतना केयर फ्री एटीट्यूड. करते क्या हो आप?
3: मैं एक्चुअली वेल आई वर्क इन एन ऑडिटिंग कंपनी. तो थोड़ा कंपनी में सीरियस है.
1: ये क्या है ऑडिटिंग? ऑडिटिंग आपको एक्टिंग एक्टिंग में घुसना चाहिए. लग रहे हो एक नंबर के एक्टर आप. फुल ड्रामेबाज. चलो रिया, लेट्स सी कि यहाँ पे आपकी कितनी एक्टिंग प्रूव होती है. बिकॉज दिस इज अ बॉलीवुड गेम, नेम प्लेस मूवी थिंग हम खेलने वाले हैं. चार कैटेगरीज आपको मुझे जवाब देने हैं विद द सेम लेटर. आई विल गिव यू 5 seconds का टाइम ईच. कूल? चलो, यूर अ ब्रो, तो मतलब हम डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट करें या फिर थोड़ा थोड़ा इजी? थोड़ा इजी है ना, थोड़ा पहले इजी वार्म अप करते.
3: पहली बार है.
1: रिया सोच रही है मैंने क्यों इतना अपना ढिंडोरा पीट दिया शुरू में ही. ओके रिया, चलो वी विल स्टार्ट विद अ रिलेटिवली इजी लेटर फॉर यू. द लेटर दैट आई एम गिविंग यू इज द लेटर जी. जी से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: गोविंदा.
1: वेरी गुड. जी से मूवी.
3: गोवा.
1: गोवा
3: नहीं,
1: ये तो प्लेस हो गया. हाँ, गो गोवा गॉन. वेरी गुड. अब बताओ प्लेस.
3: गोवा.
1: बताओ थिंग. गोवा नहीं बोलना आप. जी से थिंग क्या बता रहा?
3: गिटार. गिटार.
1: ओके, मुझे लगा गोवा गोवा. नेम गोवा, प्लेस गोवा, थिंग भी गोवा. चलो यार, अभी मुझे पता चल गया योर प्रो एट दिस. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इजी लेटर. नाउ डिफिकल्ट लेटर. कूल. दिस इज अ रियल थिंग, बट आई प्ले 2 rounds, 1 easy 1 थोड़ा डिफिकल्ट. आई कांट मेक इट सो इजी ना. कम ऑन रिया, आई फील लाइक यू कैन डू दिस.
3: लेट्स गो.
1: ओके, आई एम नॉट इतना डिफिकल्ट नहीं दूंगी, ठीक है. आई एम गिविंग यू द लेटर टी. टी से बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम.
3: तमन्ना.
1: वेरी गुड, तमन्ना भाटिया. हाँ जी. टी से बताओ मूवी.
3: काली जमीन पर.
1: टी से बताओ प्लेस.
3: तमिलनाडु.
1: टी से बताओ थिंग.
3: तमिलनाडु.
1: कौन सी?
3: ट्रेन.
1: ट्रेन नहीं, वो व्हीकल है. मुझे ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग बताओ. नॉट अ व्हीकल. रिया मुझे पता है आप भी वही कर रहे हो जब मैं करती थी बचपन में. जब चीजें नहीं सूझ रही होती ना, तो जस्ट से द थिंग. लाइक फॉर एग्जांपल आर. आर से मैंने बोल दिया कुछ बोलने को, रा रा रा रा रा करने से चीजें आ जाती है दिमाग में. सही बोला है, सही बोला यार. यू हैव प्लेड वेरी वेल. यू प्लेड वेरी वेरी वेल रिया. मुझे आपके आंसर सुन के बस हंसी आने लगी. तो यू प्लेड.
3: You'll not believe. I called you when my friend was sitting with me.
1: तो आपको
3: और उसको मैंने you told me 5 minutes तो अभी वो मेरे साथ आई थी चाय पीने के लिए. अब मैं गाड़ी में अकेली हूँ.
1: तो आपका lifeline भी चला गया. यार, बट यू डोंट नीड एनी हेल्प. यू योर सेल्फ आर सो एंटरटेनिंग एंड यू आर सच अ प्रो एट दिस गेम. आप अकेले ही खेलते रह सकते हो ये गेम. बट इट वाज सुपर सुपर फन टॉकिंग टू यू रिया. होप यू एंजॉयड.
3: यस यस, नो आईडिया.
1: हैव अ ग्रेट डे रिया. बाय.
3: यस, व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस?
1: हां, प्राइस मेरा प्यार और ऐसी पप्पियां.
3: हैव
1: अ ग्रेट डे रिया. बाय.
3: थैंक यू सो मच. बाय बाय.
1: That was Riya with us on the phone lines. Yaar, ye lagta hai difficult hai, lekin if you're a pro at the game and Bollywood as well, it's actually very simple. All you've got to do to play is call 800-1062-PAY. That's our toll-free number. Action!

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
3: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
2: या राइट, नो, इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
3: रियली?
2: या, एंड विद द इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
3: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
2: गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, वाइब्रेंट कलर एंड अ नेचुरल लुकिंग फिनिश विद हेना स्पीडी इजी हेयर कलर मेड इन इटली।
4: It's hot it up with big tickets.
5: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
4: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: The Big Mix. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: Insurancemarket.ae.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
9: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: हां जी, गुड आफ्टरनून. जोहरा के साथ हूं आप ऑन द बिग मिक्स ऑल द वे अंटिल 5 PM. फिलहाल आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर दैट योर प्लान्स आर सॉर्टेड फॉर टुमारो इवनिंग, क्योंकि मैं होने वाली हूं कल शाम. कहां पे होने वाली हूं यार? वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू बी एट द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द ब्रांड न्यू बेबी शॉप स्टोर विच इज एट मॉल ऑफ उमलक्वेन. ये हो रहा है कल 15 जुलाई शाम 6 बजे से. एंड आई वुड लव टू सी यू देयर. या मेक श्योर आप अपनी फैमिलीज को लेकर आओ बिकॉज यू गेट टू एंजॉय 25% ऑफ अक्रॉस द स्टोर टिल संडे which is 19th July. साथ ही साथ first 100 shoppers को free gifts भी मिलने वाले हैं. There's face painting, balloon bending, free popcorn, dates, kava, everything for the whole family. तो बच्चों को तो specially लेकर आओ because there's so much for them. साथ ही साथ with your family you enjoy some amazing shopping deals and don't forget to come say hi क्योंकि मैं वहाँ पर आपका wait करने वाली हूँ. Baby shop, the brand new store at Mall of Umalkuin this Wednesday, that's tomorrow 6 PM onwards.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Chill.
2: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. T&C Supply.
0: Missed your morning buzz? Yes or no?
4: आपको पसंद है ये फिल्म?
5: सर बहुत दफा देखी है. More than 10 या 11 times देखी होगी.
4: मैंने भी खुद 6 बार जब रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल में देखी थी. It's just that kind of a movie. But yeah, let me like twist the question. अगर मैं आपकी मिसेस से पूछूं, because she sounds very interesting. तो इमरान भाई इनमें से कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं फ्रॉम दिल चाहता है? इज इट आमिर खान, यानी कि आकाश मस्कर है इन द ग्रुप, ही ऑलवेज प्लेज अ प्रैंक ऑन अदर पीपल. इज इट सैफ अली खान का कैरेक्टर समीर, जो कि हाई बेचारा बट विद अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? और इज इट सिड, मैं नहीं बल्कि वो अक्षय खन्ना, जो कि बहुत इंटेंस हैं एंड इज अ आर्टिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन? सो हु डू यू रिजेंबल द मोस्ट?
5: मेरी मिसेस कहेंगी आमिर खान.
4: हैं
5: जी.
4: आपकी लव मैरिज थी या अरेंज है, क्या था?
5: सर अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज के बाद बहुत लव हुआ.
4: वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो ग्रेट आंसर यार, ग्रेट आंसर. यू आर इन गुड फॉर्म टुडे.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, हैवी ट्रैफिक अगर आप है E311 पर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड हेडिंग टुवर्ड्स शारजा, ऑलरेडी वेरी वेरी पैक्ड. ये शुरू हो रहा है वर्का 1 से गोइंग ऑल द वे अंटिल S12 शारजा रिंग रोड. वेरी हैवी ट्रैफिक, नो एक्सीडेंट अ सच, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है एटलीस्ट फॉर अबाउट 22 मिनट्स. उसके अलावा आपको मिल जाएगा हैवी ट्रैफिक अल रिगा एरिया के पास अगर आप है, तो वहां पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ऑन D89 अल मुसल्ला स्ट्रीट नैफ की तरफ जाते हुए, एटलीस्ट अबाउट 7 मिनट डिले एक्सपेक्टेड ऑन दैट रोड. उसके अलावा थोड़ा सा यूजुअल ट्रैफिक आपको मिल जाएगा किफाफ स्ट्रीट, E11 शेख जायद रोड, ऑल्सो E44 अलखेल रोड D3 के पास थोड़ा सा ट्रैफिक है. एनी अदर अपडेट आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं 0543091062 पे.
0: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:05।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अगर आपने गेस कर लिया है गाना कौन सा है, गुनगुना सकते हैं. देन आई एम लुकिंग फॉर यू. 800-1062 इज द नंबर टू डायल. घर जाते जाते यू नो सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है गाना गाना, गाना गुनगुनाना. और बोलने से पहले ही फोन लाइंस आर बजिंग. सो या इफ यू वांट टू सिंग अलोंग, यू वांट टू डू अ बिट ऑफ कैरियोकी, गिव मी अ कॉल व्हाइल यू आर एट इट. वी हैव गॉट आदित्य रिखारी के पास.

0: Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Not really big but slow moving Motive 2. Mohesh na aapko almost a 25 minute delay milega. There's heavy traffic though, kind of standstill agar aap Gisses ke aas paas hain. Traffic trailing very very slow at the moment near Abu Hail Dera side, and Dubai Gold Souk Fahidi is also packed. There's traffic on Sheikh Zayed. Filhal it's showing a 35 minute delay. Anything else you'd like to report, you have my number 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
6: गुस्से से बोलेगी, नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलेगी, मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे, जहां ना वक्त, ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और। बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
0: 106.2, the beat of Bollywood.

खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill and Mansi. And every single evening, 5 to 6, we do the karaoke. Ghar jaate jaate, we entertain ourselves, we entertain others. आपका टैलेंट मेरी ऑडियंस एंड आज आई हैव गॉट अ डॉक्टर हु सिंग्स. लेट्स वेलकम डॉक्टर कोमल. हाय गुड इवनिंग.
2: हाय गुड इवनिंग मानसी.
1: हाउ आर यू.
2: आई एम ड्राइविंग.
1: मुझे एक बात बताओ, क्या आप गाना गा के इलाज कर देते हो या दवाई वगैरह लिखते हो?
2: क्या लगता है आपको?
1: आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आधे पेशेंट्स तो सिर्फ शायद आपसे बात करने ही आ जाते होंगे.
2: I think I'm in the wrong profession.
1: It's never too late. तो किस चीज की डॉक्टर हो आप?
2: मैं बायोप्सीज रिपोर्ट करती हूँ, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ.
1: ओके, सो व्हेनेवर यू फ्री डू यू लाइक सिंगिंग? यू एंजॉय सिंगिंग?
2: Yes, it's been my favorite hobby.
1: Very nice. A doctor who can sing, I love it. So I'm sure you've figured out the track. So without further ado, let's hear Dr. Komal Ashram on the karaoke.
0: Karaoke.

0: मजा आ गया, मजा आ गया. डॉक्टर कोमल, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन. What a lovely singer. मुझे लग रहा था अनुराधा पौडवाल जी उस तरफ हैं और मैं यहाँ सुन रही हूँ. मजा आ गया है.
1: पता है मानसी, ये मैंने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में गाया था. दिस इज माई फेवरेट ट्रैक एंड आई हैड गॉट अ सेकंड प्राइज देन.
0: मेरी तरफ से फर्स्ट प्राइज है. मतलब यू हैव एक्चुअली सेट द बार सो हाई दिस इवनिंग. आई थिंक बहुत प्रेशर है बाकी सारे सिंगर्स पे. बट थैंक यू सो मच. राइटिंग भले ही डॉक्टर्स की खराब हो, गाना गा सकते हैं आज, मुझे पता चला.
1: थैंक यू
0: डॉक्टर कोमल, यू मेड माय इवनिंग. एंड उन सभी की जो इस वक्त गाड़ी में है, तो जब आप शारजा जाएं डॉक्टर कोमल के पास, उनसे बोले दवाई नहीं चाहिए, बस दो लाइन गा दीजिए, ठीक है. थैंक यू,
1: बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय.
0: तो यही है आज का हमारा ट्रैक. एंड इफ यू ऑल्सो फील लाइक सिंगिंग, आप भी गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरे अंदर की अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू को बाहर आने की जरूरत है, गिव मी अ कॉल. आई एम लुकिंग फॉर माय कैरियोके क्वीन और किंग, बट आई थिंक डॉक्टर कोमल ने कमाल कर दिया आज शाम. कैरियोके
2: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: That was the fast track song of the hour, keeping you company until 9. Mansi, coming up, break your spar. वैसे मैं नहीं गाऊंगी, गाने का मौका आपको मिल रहा है विद कैरियोकी. अगर गाना है तो मुझे कॉल करो. ऑल्सो रिमाइंडिंग यू, अगर यू आर लविंग अस हियर, डेफिनेटली चेक अस आउट ऑन इंस्टाग्राम. आपको और मोहब्बत हो जाएगी हमसे. 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. इसी के साथ वी हैव गॉट Radio on Big 106.2, a part of Fun Nation Network.

0: अभी यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
1: गुड इवनिंग, ये है बिग थ्रिल मानसी। एंड एक बड़ी कमाल रील हमने आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है अबाउट माय नॉलेज व्हेन आई टॉक अबाउट फुटबॉल। अब मुझे फुटबॉल की तो जीरो नॉलेज है, बट मैंने सुना है प्लेयर्स बड़े गुड लुकिंग हैं। सो डेट और पास, नाम मुझे एक का नहीं पता है, कौन सी टीम कौन से क्लब से खेलते हैं ये भी नहीं पता है। इट्स कंप्लीटली प्योरली बेस्ड ऑन गुड लुक्स एंड गुड लक्स। सो गो एंड चेक इट आउट ऑन आवर इंस्टा व्हिच इज 106.2 बिग एफएम। वैसे अगर आपको रियल गेम में फुटबॉल में इंटरेस्ट है, देन कैच एवरी वर्ल्ड कप मैच लाइव एट सिटी मैक्स होटल्स, ऑफिशियल फैन ज़ोन्स अक्रॉस दुबई, एंड ब्रॉडकास्टिंग गेम्स पास 3 AM। चीयर फॉर योर टीम ऑन जायंट स्क्रीन्स एट द हडल इन बार दुबई, अल बर्शा एट द मॉल, एट द ब्रू हाउस इन बिजनेस बे। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड कप फूड स्पेशल्स भी आपको यहां मिलेंगे। दे गॉट फीफा प्लैटर्स एंड मोर जस्ट क्रिएटेड फॉर मैच डेज। यू कैन ऑल्सो स्कोर हैप्पी आवर डील्स विद सिलेक्ट बेवरेजेस From just 24 dirhams at the Huddle in Al Barsha, ये 12 बजे से रात 9 बजे तक every single day. Head to Huddle Bar Dubai for select beverages from 31 dirhams plus a 25% off on your total bill. 12 से रात 9 बजे every single day. So go and enjoy the games at City Max. So when I come back, something very very exciting happening tomorrow Umal Quain में. आपको बताती हूँ. You stay right here.
2: अरे गोया क्या?
3: Yeah.
4: काटेगी क्या?

0: Discover the Freedom plan that suits you best. Freedom. Your choice. Your rules. Visit eand.ae to learn more. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: गुड इवनिंग, यह बिग थ्रिल मानसी। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके हस्बैंड आजकल बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको बता दूं एक ऐसा हस्बैंड है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया है। ऑफिस से मिला ब्रांडेड मेकअप से भरा बैग, इसने क्या किया, बीवी को नहीं दिया, घर नहीं लाया, अपनी फीमेल को वर्कर को दे दिया। मोर ऑन दिस स्टोरी व्हेन आई कम बैक। ऑल्सो वी प्लेइंग द 5-second रूल, इट्स अ फन गेम, हम हर शाम खेलते हैं, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर। आई नो इट साउंड्स वेरी इजी, बट अगर आज तक आपने खेला नहीं है तो ट्राई करो, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं जितना लगता है। 800-1062 इज द नंबर टू डायल। किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:06।
2: Bollywood.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल. मैं हूँ मानसी. वी प्लेइंग द 5 second रूल. आ गए हैं अभिषेक. हाय अभिषेक.
2: हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: ऑल गुड, ऑल गुड.
1: अभिषेक, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आर यू इन अ रिलेशनशिप? डू यू हैव अ वुमन इन योर लाइफ?
2: हाँ, आई एम मैरिड.
1: मतलब दुखी हो कि खुश हो?
2: हमारी
1: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है अभिषेक?
2: अभी क्या है, बैचलर लाइफ चल रही है, फैमिली वेकेशन में गई है.
1: फैमिली वेकेशन में गई. अच्छा टाइम चल रहा है आपका तो, है ना? फिलहाल आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. यू गेट अ बैग फुल ऑफ ब्रांडेड वेरी एक्सपेंसिव मेकअप फ्रॉम वर्क एंड अपनी बीवी को देने की जगह आप अपनी फीमेल को वर्कर को वो मेकअप दे देते हैं. दिस इज द अल्टीमेट बिट्रेयल. करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज अ मैन?
2: ये तो अत्याचार है यार.
1: ये बंदा सही बंदा है, बिल्कुल अत्याचार है. आई थिंक अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़की है तो मेकअप सिर्फ आप उसी के लिए खरीदेंगे, किसी और के लिए नहीं.
2: ऑब्वियस, मंदे लोग क्या है, मर्द लोग, अगर हम खुद लॉयल्टी चाहते हैं बट खुद लॉयल नहीं रहते हैं.
1: ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं? क्योंकि आपकी बीवी छुट्टी पे गई है.
2: नहीं, मैं तो क्या है, ओनली कुलिक के साथ एंजॉय कर रहा हूँ. लाइक फीफा चल रहा है ना, सुबह ऑफिस जाओ, आ जाओ, फ्लाइट हैंडल करो, बस वही चल रहा है.
1: मैं कह रही हूँ ना, जब तक आप फुटबॉल देख रहे हो और फुटबॉल खेल रहे हो, फाइन है, कोई और गेम्स मत खेलना शुरू कर देना. बट एज अ मैन यू अग्री ना कि अगर आपने मेकअप किसी और लड़की को दिया, अपनी जिंदगी में जो बंदी है उसको नहीं दिया, तो ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ बिट्रेयल की वाइफ का है.
2: बिल्कुल, अगर तो आप बैचलर हो तो ऑब्वियस गर्लफ्रेंड का है, अगर मैरिड हो तो वाइफ.
1: अगर ऐसा होता हाइपोथेटिकली कि तो आप अभिषेक अपनी को वर्कर को दे देते ये मेकअप, तो बीवी क्या करती?
2: मैं देता नहीं, अगर देता तो बताता नहीं, क्योंकि फिर उसको हर्ट होता ना.
1: हाय हाय हाय हाय. पर अगर पता चल जाता तो?
2: नहीं, इतनी नौबत नहीं आने देते से.
1: Yeah, they're very smart. You know, one thing about men is they can hide and they can keep it well. We'll play the 5 second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheeze batani hai 5 second ke andar. All the best.
0: Okay. 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: 3 things that are yellow in color and aap kha sakte hain.
2: Banana, aur, moong dal.
1: Very nice.
2: Yellow egg part.
1: येलो व्हाट? एग योक बोलते हैं उसको. ऑलमोस्ट. हाँ, 5 सेकंड फटाफट. 3 सनी देओल की मूवीज.
2: घातक, घायल, जिद्दी.
1: ये सनी देओल फैन. वेरी नाइस. 3 things बिकॉज आप एयरपोर्ट पे काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलती हैं.
2: लॉन्च, एयरक्राफ्ट एंड बैगेज ट्रॉली.
1: महंगा खाना पीना भी.
2: ऑब्वियस.
1: 3 things that are a big no-no for you after your shadi.
2: बीवी ने एक्चुअली ऐसा कोई रूल तो नहीं बनाया. अकेले पार्टी नहीं जा सकता हूँ. ठीक है, अकेले शादी नहीं.
1: अकेले शादी नहीं कर सकता हूँ, मतलब शादी
2: शादी में नहीं जा सकता किसी की शादी में.
1: टाइम खत्म हो गया. फटाफट फटाफट आप अच्छा खेल रहे हो. लेकिन 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम आता है.
2: हम आपके कौन, हम साथ साथ है,
1: और नॉट बैड. पहली बार के हिसाब से अभिषेक आपने अच्छा खेला है. आपको मजा आया कि नहीं आया?
2: सुपर सुपर.
1: थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सब बंदों को ये सिखाने के लिए कि इससे बड़ा अत्याचार हो नहीं सकता है. घर में अगर बंदी है तो मेकअप उसी के पास जाएगा. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू.
2: यू टू.
1: बाय अभिषेक.
2: बाय. थैंक यू.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गोल चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गोल चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 7:07।
2: बॉलीवुड।

0: Sia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi. It's time for the big summer surprises. Your chance, shortlist hone ka for the ultimate family staycation. And ye sab karne ke liye, register karna bahut zaruri hai. Send us a WhatsApp, BSS, your name, 0543091062 pe. If at all you don't get a chance here, you can head to our Instagram page. Wahan se aapko direct entry milegi for the big summer surprises. 106.2 Big FM, that's our Insta handle. Filhal, randomizer ne dhoom nikala hai. We've got Kaniz and Madiha. Good evening, girls.
2: Good evening.
1: Good evening, Madiha. I want to ask you, do you understand Hindi? Do you speak Hindi? Do you listen to Hindi music?
2: Yes, I do.
1: But originally, where are you from?
2: I'm from Calcutta,
1: Achha,
2: India. Yeah.
1: मुझे मैंने जब इनसे पहले पूछा मुझे लगा कि नहीं ये है नहीं देसी. इसलिए मुझे लगा यार इनको कैसे देसी गानों में इंटरेस्ट होगा.
2: Yeah, I know a few.
1: Very nice. I love Calcutta. My mom is from Calcutta, so I love that place.
2: Wow.
1: Yeah, but been years. What about you, Kaniz? आप कहाँ से हैं?
2: मैं राजस्थान.
1: यार दोनों इतनी खूबसूरत जगहों से है. एक तरफ रसगुल्ला, दूसरी तरफ दाल बाटी चूरमा. ओए होए होए. बट फिलहाल
2: आप जरूर आइएगा हमारे घर.
1: पधारो हमारे देश. मैं भी थोड़ी वो हूँ ना, कार्ब्स वार्ब्स कम खा रही हूँ. जिस दिन मैं खाने लगूंगी मैं बहुत बेशरम हूँ. मैं आ जाऊंगी कि बस अब खिलाओ मुझे दाल बाटी चूरमा. फिलहाल कनीज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप स्टेकेशन पे गए थे?
2: ईयर बैक.
1: काफी टाइम हो गया, ऐसा क्यों? हस्बैंड जो है बिजी है काफी.
2: जी, वो काम में बिजी रहते हैं इसलिए.
1: तो उन्हें लेकर जाओगे अगर आप जीतोगे कि बस बच्चों के साथ?
2: श्योर, अगर आप जीतोगे तो डेफिनेटली लेकर
1: जाऊंगी. मुझे लगा बच्चे के साथ खुद ही निकल जाएंगे. व्हाट अबाउट यू मदीहा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप गए थे ऑन अ स्टेकेशन?
2: स्टेकेशन आज तक आई हैव नॉट बीन ऑन अ स्टेकेशन, बट
1: वेरी नाइस. चलो अभी आपका डेब्यू कराते हैं. इट्स वेरी वेरी सिंपल. आई एम गोना प्ले यू अ फ्यू सॉन्ग्स. यू हैव टू गेस द सॉन्ग्स. दी सॉन्ग्स आर पिक्चराइज्ड अराउंड वाटर, अराउंड बीचेस, एंड हुएवर गेसेस द गाना राइट ए इज वॉकिंग अवे आश्रम विद ओपन मूवी टिकट्स कर्टसी ऑफ वॉक सिनेमास प्लस F&B वाउचर्स एंड योर नेम गेट्स इनटू द ड्रॉ फॉर द स्टेकेशन. बट टू आंसर लाउडली बोलना है बिग मदीहा, बिग कनीज, एंड फिर मैं आपसे बोलूंगी जवाब देने के लिए. ठीक है, ये नहीं किया, सीधा आंसर दे दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे.
2: Okay.
1: All the very best. Let's play.
0: Participate in Summer Song Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almired Ras Al Khaimah.
1: All right, the very first song is...
2: Big Kani.
1: Big Kani is yes.
2: तनहा तनहा यहाँ
1: ये कोई बात है. वेरी नाइस. ये पीछे से पूरी फैमिली हेल्प कर रही है, आवाज आ रही है हमको, बट कोई बात नहीं, फैमिली स्टेकेशन है, चलता है. One point to Kaniz. Madiha, you
2: are there. हाँ, नहीं आता था मुझे.
1: अरे यार, चलो दूसरा गाना सुनाते हैं.
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी पानी.
1: अरे दिन भी सनी सनी सनी. इसी के साथ हो गया है वन ऑल. एक कनीज, एक मदीहा, तो ये डिसाइडिंग हो सकता है. ध्यान से सुनिएगा. कनीज यस.
2: यारा तेरे सदके
1: इश्क सिखा.
2: या
1: मैं तो आई
2: सजिदे
1: देखो. कनीज, वैसे ये क्रेडिट पूरा आपके मियां को जाता है. सारे आंसर सुनने लगी है. हाँ, सारे आंसर सुनने
2: होते हैं. मेरे भी मियाँ होते तो हो जाता.
1: हाँ, देखो तो ये पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है. तो कंग्रेचुलेशंस कनीज, आप हो गई हैं शॉर्टलिस्ट फॉर द स्टेशन.
2: सो हैप्पी टू टॉक टू यू.
1: I am very, very happy that your husband is there helping you out. That is so cute. But Madiha, you can still keep trying, okay? We still are registering, so aap try karte rahiye. Filhal, Kaniz, open movie tickets and F&B vouchers aapke hue, plus aapka naam draw mein jata hai. All the very best.
2: Thank you so much.
1: Bye. Have a great evening. Bye.
2: Thank you.

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 96.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 36 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 33. ह्यूमिडिटी फिलहाल 58% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: जिंदगी में थ्रिल अगर आप भी चाहते हैं देन अपग्रेड कीजिए अपनी एसयूवी. इफ यू आर रेडी फॉर अ सीरियस एसयूवी अपग्रेड देन यू हैव टू चेक आउट द लेटेस्ट डील्स फ्रॉम जेटोर. ड्राइव होम अ ब्रांड न्यू जेटोर विद 0 वैट और 0% इंटरेस्ट एंड अ 1 मिलियन किलोमीटर वारंटी. प्लस यू कैन एंजॉय अप टू 10,000 दिरहम्स कैश बैक एंड फ्री इंश्योरेंस ऑन सिलेक्टेड मॉडल्स. बेस्ट पार्ट ये है, यू कैन बाय नाउ एंड पे नेक्स्ट ईयर. योर ड्रीम एसयूवी कुड बी योर्स विद ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 966 दिरहम्स अ मंथ. So head to your favorite Jator showroom. They are in Abu Dhabi, Dubai, Ajman, ya Peralin, and take it for a spin today. Jator UAE, part of the Elite Group Holding. TNCs do apply.

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: All right, so we're celebrating 20 years of this laughter riot. In fact, ये एक फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी 2006 में. लोगों को लगता है कि ये रोहित शेट्टी की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, बट 2003 में रोहित शेट्टी का डेब्यू हो गया था विद द मूवी कॉल्ड जमीन. बट ऑफिशियली द ब्रेक थ्रू वॉज दिस मूवी. इनफैक्ट इसका एक सीक्वल 2008 में भी आया था. और आइकॉनिक मूवी फ्रॉम अजय देवगन, शर्मन जोशी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, परेश रावल, रिमी सेन. आज इस मूवी को पूरे 20 साल हो गए एंड आई हैव रीविजिटेड रीवॉच दिस मूवी लाइक अ जिलियन टाइम्स. बहुत सारे कॉल्स ऑलरेडी आने लगे हैं, बट आपको जवाब इंस्टाग्राम पे देना है. देयर इज अ स्टोरी अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम. यू हैव टू टेल मी द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. लेट मी गिव यू अ हिंट.
2: तू समीरी है ना?
3: नहीं, मैं अजय देवगन हूं. ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा.
2: बच्चे का क्या कुछ, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ.
3: चार कटिंग बना और मेरे लिए एक नान खटाई.
4: पैसा
3: हरे कलर का होता है, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो होती है. चल चाय बना.
5: वो बूढ़ी ने तो मुझे आंख भी मारी.
6: उसने तुझे आंख मारी?
5: हाँ,
6: मतलब वो 100% अंधी है.
7: यार मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है.
8: इतनी सी बात के लिए तू रो रहा है? इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के.
9: कितने जान से मार दिया तू.
8: जान से थोड़ी मारा, मैंने तो रोड से मारा था.
3: आपकी लव मैरिज थी?
8: यस बेटे.
3: और दादी की?
8: दादी का भी लव मैरिज.
3: दादी का भी लव मैरिज ही हुआ ना.
10: ओए टिक्की, ओ चूना लगा दिया.
1: एक्चुअली आप सब चार दोस्त, अ ब्लाइंड कपल एंड हीरे. अगर आपने गेस कर लिया, देन हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम एंड मुझे बताओ ये मूवी कौन सी है. वी सेलिब्रेटिंग 20 इयर्स ऑफ

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2